0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li no le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जुब सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से जेजो लंका का मांस दे देना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो मछु जो जितला मुनियो तो संग तंगा मोटा तो तो मत ताते ले गेम गने जेजो लंका बी पेंडो रे
0: रे रे तंगा ह गिंग के का शाम बत की छि इन रो तिन मुनी ला सान रो रे
1: और रे रे रे
2: लंका
0: के तो तो हमें चाय या बस के चला जेपिन जो को
3: 好有了把做亲不没有危机场面记住狼狗了马子有呢也不有这不能把做先拉着这雪碧路基丁呢先把三追次人个东西错打拿错卡几十日先把路基丁一路基丁一些钱的这人个看那谁家硬币碰的月等那谁没人家没求助月为那马黑地位查经月 Tsomo dana nyamu senyanyi, chikyo jermu kayim jichiri. Ngayi chikyo jermu jinji suena rangzhu, doji gangchun bebi ningkuyi, meji chume chuvi semayi. Barna chivi tsochin chikyo jermu, nangka sala longwi nyangnangyu. Tsomo dana nguji leichengyu.